0: अरे बस बस बस बस सांप पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: का है, साइंस का है, मैथ्स क्लब का है, तो सबके बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता था कि हर बच्चों को अगर टॉपिक दे दिए कि ये टॉपिक तुमको आज रेडी करके आना है और सुनाना है, तो उनको खुशी होती थी कि हमारा वीडियो तैयार हो रहा है और हम वो ऐप पे डाल रहे हैं तो उनको, और उनको दिखाते भी थे हम लोग स्क्रीन पे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। और अभी जैसे पोस्ट ऑफ द मंथ मिलते जाते हैं तो हम बच्चों से शेयर करते हैं ना,
1: हाँ।
0: विनोबा की तरफ से जो भी गिफ्ट मिलते हैं बच्चों से शेयर किए जाते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है।
1: क्या बात,
0: उनको भी पता है बच्चों को।
1: वाह मस्त,
0: तो वो उनमें और वो लगता कॉम्पिटिशन लग जाता कि हमारा वीडियो आगे आना चाहिए।
1: त्यांच्यात एक प्रकारची चुरस निर्माण झाली की आमचा पण व्हिडिओ बनवा,
0: और बच्चे और आगे बढ रहे उसकी वजह से, थोडा और उनको अलग से चान्स मिल रहा है ना, फिर ये व्हिडिओ बनाना, याद करना, उसको एडिट करना, बच्चे खुद बराबर करते फिर।
1: क्या बात है, मस्तच। बर मग आतापर्यंत तुम्ही किती पोस्ट शेअर केल्या असतील?
0: मेरे 500-550 हो गए।
1: हो, क्या बात है। आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या संकल्पना राबवल्या होत्या, म्हणजे काय टॉपिक घेतले होते?
0: मेरे सभी टॉपिक पे मैंने वैसे काम किया है। मेरा एक बड़ी क्लास का है तो मेरा साइंस, मैथ्स क्लब, स्पेलिंग का, इंग्लिश का, क्राफ्ट का आता, अपना योगा का भी आता, फिजिकल का भी आता,
1: अच्छा
0: साइंस का भी आता, साइंस के प्रैक्टिकल्स रहते हैं। हम लोग जो इको क्लब, एक हमारा प्रोग्राम है, उपक्रम है, उसके अंतर्गत हम स्वच्छता का भी लेते हैं, उसके नुक्कड़ नाटक रहते, प्लेस रहते, तो वो भी सब उस पर शेयर करती हूँ। फिर बच्चों का जो क्लास वर्क होता है वो भी हम लोग शेयर करते
1: हैं। अच्छा, आणि आता उर्दू शाळा आहे तर मग ईद खूप मोठ्या प्रमाणावरती साजरी होत असेल, मग त्याचं एक सेलिब्रेशन कसं असतं?
0: बिलकुल, इसका भी सेलिब्रेशन करते हैं हम सब मिलकर, जो है वो बच्चों का ईद के बाद जो हमारा प्रोग्राम किया जाता है तो उसके भी सब वीडियोस फोटोज हम शेयर करते हैं उसके ऊपर।
1: मतलब शाला कहीं वेगी डेकोरेट वगैरह?
0: हाँ बिल्कुल, बच्चे अपने अपनी क्लास सजाते हैं,
1: हाँ।
0: पूरा अच्छे से सब डेकोरेट करते हैं अपने अपने, उसमें भी बच्चों में कॉम्पिटिशन रहता
1: है
0: कौन सा कमरा अच्छा सजेगा।
1: अच्छा बर, मग काही धार्मिक गोष्टी पण शिकवल्या जातात मुलांना?
0: धार्मिक तो ऐसे स्पेशल नहीं, मतलब परेड नहीं होता,
1: हाँ।
0: अपने जो रेगुलर सब्जेक्ट है वही रहते हैं, लेकिन सिर्फ जो पढ़ाते पढ़ाते जैसा कोई टॉपिक आ गया तो फिर सभी मजहब का साथ में लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, ऐसे स्पेशल मजहब का नहीं रहता।
1: अच्छा, हाँ। आणि मग इतर जे काही सणवार येतात किंवा कोणाची कोणी मोठी पर्सनॅलिटी असेल त्यांचे काही जयंती पुण्यतिथी येते, मग हे पण आपल्याकडे होतं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी अपने नेता है, अपने आंबेडकर जयंती है, शिवाजी जयंती है, महात्मा फुले पुण्यतिथि थी, 200 साल हो गए उनके, उनका प्रोग्राम भी हमने सेलिब्रेट किया।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो जितने अपने मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में जैसे अपने होते, नेशनल में लेवल पे जितने भी, सब पूरे किए जाते हैं स्कूल में।
1: वाह, म्हणजे समानतेचं शिकवणूक विद्यार्थ्यांना आतापासूनच मिळते। क्या बात है,
0: चार लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और उर्दू, चार लैंग्वेज सीखते बच्चे स्कूल में।
1: क्या बात, मस्तच। बरं, मग आणि तुम्हाला जेव्हा पोस्ट ऑफ द मंथ रिवॉर्ड मिळालं त्यावेळेला तो प्रसंग कसा होता, म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या हातून सन्मानित होणं हे प्रत्येकासाठीच गौरवाचं असतं, मग ती घटना सांगावीशी वाटते?
0: बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार मुझे मिला था, पिछले साल ही मिला था, जनवरी में ही मिला था मुझे, फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिला था और अपने शिक्षण अधिकारी के हाथ से मिला था। हमारे HM, हमारा स्टाफ तो बहुत खुश हो गया था, उन्होंने भी स्कूल में भी सम्मानित किया और फिर यहाँ पर भी बुला के हम लोगों को गिफ्ट या सर्टिफिकेट दिया गया।
1: वाह, कितनी छान,
0: और वो फैमिली में तो बहुत ज्यादा खुशी हुई।
1: वाह, मुझे शैक्षणिक साहित्य जेव्हा मिळतं आणि मग त्याच्यावर तुम्ही मुलांना वाटता, मग त्यांचं कसा असतो आनंद?
0: बच्चों को वो जो है ना पूरा, मैं तो ज्यादातर, मतलब मेरी बड़ी क्लास है इसलिए मैं छोटी क्लास के पहली दूसरी के बच्चों को शेयर करती हूँ।
1: हाँ।
0: बच्चों को, उनको बच्चों को, छोटे बच्चों को ज्यादा खुशी होती
1: हो,
0: उनको गिफ्ट मिला तो, बड़े बच्चे कैसे उनको उनको बता के हम शेयर करते हैं कि भाई तुम्हारा ही है गिफ्ट, लेकिन हम छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो उनके हाथ से दिया जाता है, बड़े बच्चों के हाथ से छोटे बच्चों को देते हैं।
1: क्या बात है,
0: तो उनको अच्छी प्रेरणा मिलती है ना, जैसे बांटने की, देने की, अपनी चीज दूसरों को देना है, उनको और प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि हमारा गिफ्ट है, हमने दिया दूसरों को, अपने दूसरे छोटे बहन भाई को दिया, उनको अच्छा लगता है।
1: वाह, ही संकल्पनाच खूप आवडली मला, की जनरली मी आतापर्यंतच्या मुलाखतींमध्ये हे ऐकलं नव्हतं की मोठ्या मुलांच्या हातून लहान मुलांना की शिक्षक घेऊन येतात आणि शिक्षकच वाटतात, मग त्यात काही खूप असं हॅपनिंग नाहीये, पण ही तुमची संकल्पना खूप छान आहे आणि आय थिंक जेवढे कोणी आपले शिक्षक सहकारी ऐकत असतील त्यांना पण ही कल्पना कदाचित छान वाटेल। वा बरं, मग विद्यार्थ्यांमध्ये काही बदल झालेला जाणवला का तुम्हाला?
0: हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, ये जो हमारा जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना स्पोकन इंग्लिश के, कविता वाचन के, स्पेलिंग बी के, तो उसमें बच्चों को हम लोग हर हफ्ते विनोबा ऐप पे हमारे प्रोग्राम दिया जाता है तो वो बच्चों को दे देते हैं और उनको टाइमिंग दिया जाता है 2 दिन में 4 दिन में आप उतना लर्न करो तो उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होती है और बहुत अच्छे से याद करके आते हैं।
1: वाह वाह। या व्यतिरिक्त आपण शनिवारी दप्तर मुक्त शनिवार असतो
0: आनंददायी
1: शनिवार, मग ते कसं सेलिब्रेट करता तुम्ही त्या
0: दिवशी? आनंददायी शनिवार में भी हमारी सुबह प्रेयर हो जाती उसके बाद हम लोग पीटी का लेते हैं और उसके बाद स्पेलिंग भी लेते हैं, मैथ्स भी का एक हमारा प्रोग्राम रहता है वो लेते हैं और फिर अपनी अपनी क्लास वर्क के हिसाब से क्राफ्ट वर्क है, ड्राइंग का है या कोई स्किल बेस्ड है, कोडिंग का है, रोबोटिक्स है, रूब्रिक्स है, सिलाई मशीन का है, क्राफ्ट वर्क है, वो सब हमारे स्कूल में अवेलेबल है। फिर अभी एक आइडियल लैब अभी हमको 1 महीने पहले मिली है उसमें बच्चों को पूरा कंप्यूटर का बारे में बताया जाता है और ऑनलाइन पूरे डिजिटल पूरी मालूमात बच्चों को दी जाती है, उसमें पढ़ाई उसके ऊपर ही की जाती है, बच्चे मतलब उनके सामने ही एक स्क्रीन है, बच्चे खुद से पूरा उसके ऊपर करते हैं।
1: अच्छा।
0: और एक स्किल बेस्ड लैब भी हमारे पास तो उसमें भी सब है, सिलाई मशीन है, वीडियो बनाना कैसे है, उसको एडिट कैसे करना है, 3D मॉडल कैसे बनाना है, जो सुतार काम होता है, लोहार काम होता है, उसका भी पूरा है। तो बच्चों को एक एक एक एक वीक में एक एक एक स्किल बताई जाती है।
1: अरे वा, बरं, म्हणजे शिक्षणा बरोबर कौशल्य विकास हे सुद्धा तुमच्याकडे तितक्याच प्रायोरिटीवरती चालतं, क्या बात आहे। बरं, पण मग सुरुवातीला जसं की टेक्नॉलॉजीशी आपण एवढं यूज टू नव्हतो पण मग आता होत आहे, मग हे विद्यार्थ्यांमध्ये पण प्रगती होतीये, हे सगळं बघून पालकांचा काही दृष्टिकोन बदललेला आहे का?
0: बिलकुल बिलकुल, अभी 3 साल से तो हम लोग एक हमारा उपक्रम है हैकेथॉन का, कोडिंग का, तो उसमें मैं बच्चों को करवा रही थी तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था और पेरेंट्स का भी, क्योंकि बच्चे घर पे जाके करते हैं ना तो वो उनके उनको हमारे तालुका लेवल पे उनका 4th नंबर भी आया था पिछले साल।
1: अरे
0: तो बहुत खुश थे पेरेंट्स भी और वो कर रहे, मतलब बच्चों के पास मोबाइल नहीं देते थे ना, लेकिन उनको कहा गया है कि भाई 1 घंटा आधा घंटा क्यों नहीं होता, उनकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाए।
1: हाँ।
0: तो बराबर देते और बच्चे बहुत अच्छा, अपने से ज्यादा अच्छा करते।
1: अरे
0: बहुत अच्छा कर रहे।
1: मस्तच। तर मग ह्या एवढ्या वर्षामध्ये काही अविस्मरणीय घटना घडलेली तुम्हाला सांगाविषयी वाटते का, कि ते कायमस्वरूपी लक्षात राहिलाय असा काही प्रसंग आहे?
0: म्हणजे तर अभि मेरे ये अभि 2-3 साल में ये जो विनोबा ऐप मैं काम कर रही हूँ ना, वीडियोस बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, मुझे भी पहले ऑनलाइन का इतना नहीं आता था, लेकिन अभी इसके बहाने से हम बहुत सीख रहे हैं और मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। मेरे कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिसकी वजह से मैं तंत्र इसने का काम कर पा रही हूँ, टेक्निकल का पूरा ऑनलाइन का काम कर पा रही हूँ, तो उनकी वजह से मुझे वीडियो बनाना भी आया और यही विनोबा पे मैं सब शेयर कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे अभी ये 3rd-4th अवार्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, 2रा है, ऐसे मेरे 13 हो गए वे पूरे।
1: अरे वाह,
0: तो मुझे बहुत खुशी इस बात की।
1: वाह। इतर शिक्षक सुद्धा आपापल्या पोस्ट टाकत असतात, मग त्या बघून तुम्ही काही तुमच्या वर्गावरती तसं काही केलं?
0: बिलकुल, अप्लाय करते ना, क्योंकि हम सबके देखते रहते एक दूसरे के और उसमें से जो हमको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी लग रहा है, ये नए ढंग से ये तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो वो भी अप्लाई करते हैं और बहुत काम के रहते हो। अभी मेरे स्कूल में, मतलब मैं तो कर ही रही हूँ, मेरे साथ साथ जितने मेरे स्टाफ वाले हैं ना वो भी विनोबा पे पूरा डालते रहते हैं।
1: वाह, मस्त,
0: सभी काम कर रहे
1: हैं। तो बरं, मग विनोबा ऐप जो आहे हा विद्यार्थ्यांसाठी किती उपयोगी आहे आणि शिक्षकांसाठी किती उपयोगी आहे?
0: दोनों के लिए बहुत अच्छा मैडम, शिक्षा के लिए तो है ही, क्योंकि सब नए दूसरों के भी वीडियो देखने पड़ते हैं, मतलब अभी अपने महाराष्ट्र में ये शुरू है और छत्तीसगढ़ में शुरू है, दोनों जगह के, तो वहाँ के भी टीचर्स की और अपने ऑल महाराष्ट्र के भी सबकी पोस्ट देखने मिलती है, कहाँ पर क्या नया चल रहा है और किस तरीके से, अगर जैसे स्पेलिंग बी का अगर मैं बना रही हूँ या कोई क्राफ्ट का मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, आप दूसरे मीडियम के जो अलग तरीके से सीख रहे हैं तो उन्होंने कैसे बताया वो मैं अपने बच्चों के लिए वो अप्लाई कर सकती हूँ और बच्चों को भी वो नए तरीके से सीखने में मजा आता, क्योंकि यूट्यूब पर तुम देखेंगे बार बार बार बार वही रिपीट होते रहता है, लेकिन अपने जो नए टीचर्स है ना वो बहुत नया नया कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहते हैं एकदम नए तरीके से, तो वो बच्चों को जब बताते हैं तो बच्चों को भी करने में मजा आता है, तो बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
1: बर, आपल्या शाळेला परसबाग वगैरे आहे का? ते गार्डनिंग आपण करतो का? ते कसं करतो?
0: वो भी है हमारा, वही सैटरडे के दिन ही हम लोग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना हम एक एक एक वीक में एक एक एक्टिविटी करते हैं, वैसे परस बाकी भी हम करते हैं, उसमें भी टमाटे मिर्ची सब दूसरे सब लगाए सब्जी के, तो बड़ी क्लास का ही हमारा 6-7 का ही रहता है, छोटे बच्चों को तो नहीं ज्यादा इन्वॉल्व करते उसमें, 6-7 के बच्चों के मेरे करते हैं।
1: वाह। या व्यतिरिक्त आपल्या सगळ्या शिक्षकांना काही सल्ला द्यावा असं वाटतो का विनोबा ऐप वापरण्याविषयी?
0: मैं कहूंगी जरूर की विनोबा ऐप सभी टीचर इस्तेमाल करें, थोड़े हमारे उर्दू मीडियम के थोड़े, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एरिया के थोड़े कम कर रहे हैं इस्तेमाल, तो उन्होंने भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम दूसरों के एक्टिविटीज देखेंगे तो हमको अप्लाई भी करता है अपने बच्चों के लिए।
1: बरोबर,
0: बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, हम कर सकते हो नई एक्टिविटीज और उनके खुद के लिए भी अच्छा है ना, इस तरह उनको मतलब धीरे धीरे उनको भी प्रेरणा मिलेगी और अच्छा काम करेंगे वो, तो ऐसे पोस्ट ऑफ द मंथ उनको भी मिलेंगे.
1: किती छान. वाह, म्हणजे फक्त स्वतःचाच फायदा नाही तर आपल्यामुळे दुसऱ्यांचा पण फायदा झाला पाहिजे. किती छान सांगितलं तुम्ही. नक्कीच सगळ्याच शिक्षकांना कळकळीची विनंती आहे की ज्यांनी कोणी आतापर्यंत ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेशन केलं नसेल विनोबामध्ये त्यांनी आता करायला सुरुवात करा. अगदीच आता पुढच्या मे महिन्याच्या सुट्टीनंतर नवीन वर्ष सुरू होत आहे आणि अनेक नवीन उपक्रम सगळ्यांसाठीच खुली होतील, तर ह्या विनोबाचा सगळ्यांनीच लाभ घ्या आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्याचा लाभ करून द्या. तर धन्यवाद, आज तुम्ही इथे आलात वेळात वेळ काढून आणि आमच्या सगळ्या श्रोत्यांशी इतक्या छान गप्पा मारल्या. आणि मुळात 22 वर्ष हा खूप मोठा कार्यकाळ आहे आणि इतके वर्ष तुम्ही शिक्षण सेवा देत आहात. खूप छान वाटलं की एक फॅमिलीचा तर सपोर्ट असतोच, पण चांगल्या घरातून व्यक्ती जर का आली तर ती किती भलं करू शकते लोकांचं, याचं तुम्ही एक उदाहरण आहात. की जर का आपल्याला माहिती असेल एखाद्या गोष्टीबद्दल नॉलेज असेल तर आपण त्याचा फायदा दुसऱ्यांसाठी सुद्धा करून द्यायला हवा, हेच तुमच्या आतापर्यंतच्या सगळ्या बोलण्यातून जाणवलं मला. आणि आज खूप छान वाटलं तुमच्याशी गप्पा मारून.
0: थँक्यू मॅडम, धन्यवाद.
1: तर नक्कीच आपल्या सुद्धा सगळ्या विद्यार्थ्यांना तुमच्या शिक्षणाचा तुमच्या नॉलेजचा फायदा व्हावा असंच मी म्हणेन. पुढील सगळ्या वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देते.
0: थँक्यू, थँक्यू मॅडम, धन्यवाद.
1: आणि आतापुरतं इथेच थांबते. तर मंडळी, आज आपल्या विनोबा म्हणे ह्या कार्यक्रमामध्ये गप्पा मारण्यासाठी सहभागी झाल्या होत्या शेख मोबिना अख्तर जलील अहमद या मॅडम, ज्या आलेल्या होत्या पीएम श्री जिल्हा परिषद प्राथमिक उर्दू शाळा चांदवड या ठिकाणाहून. आता वेळ झाली आहे कार्यक्रमात इथेच थांबण्याची, पण तुम्ही ऐकत रहा रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
2: आईचं प्रेम मोजता येत नाही,
3: पण या वर्षीचा मातृदिन तिच्यासाठी खास नक्की करता येईल.
2: आईच्या त्यागाला सुंदर आठवणींना कोंदण अडावतकरांच्या शुद्ध सोन्याचं देऊया.
3: मातृदिनानिमित्त दागिने खरेदीवर मिळवा हमखास आकर्षक भेट वस्तू,
2: सगळ्यात कमी रेट वर बुकिंग सुद्धा,
3: अनमोल नात्याला अमूल्य भेट.
2: अडावतकर ज्वेलर्स, अगोरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा कॉर्नर, नाशिक.
3: ऑफर कालावधी मर्यादित.
4: अटील सूर विश्वास, विश्वास ग्रुप आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे शाखा जलालपूर नाशिक आयोजित कार्यक्रम सूर विश्वास. यावेळी सूर्यविश्वास अंतर्गत आस्वाद घेऊया कोलकाता इथल्या साईकत रीटा सुनील मुजुमदार यांच्या शास्त्रीय गायनाचा. त्यांना साथसंगत करणार आहेत गौरव पाखी कांचन बॅनर्जी तबल्यासाठी, तर कुणाल मीना शिववर्मा संवादिनीवर. कार्यक्रमाचे आयोजक विश्वास जयदेव ठाकूर, कुटुंब प्रमुख विश्वास ग्रुप, डॉक्टर मनोज शिंपी अध्यक्ष, विश्वास ज्ञान प्रबोधिनी अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट नाशिक, रुचिता पार्थ महाजन ठाकूर, कार्यकारी अधिकारी रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, संकल्पना विनायक रानडे, प्रवर्तक ग्रंथ तुमच्या दारी. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करतील डॉक्टर स्मिता मालपुरे. तेव्हा आवर्जून या आणि या सदाबहार मैफिलीचा आनंद घ्या. रविवार दिनांक 17 मे 2026 रोजी सकाळी 7 वाजता ठिकाण विश्वास गार्डन ठाकूर रेसिडेन्सी, विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँकेसमोर, सावरकर नगर, गंगापूर रोड, नाशिक.
5: हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमात आता ऐकूया किंमत या चित्रपटामधलं गीत. ऐकूया किशोर कुमार यांच्या आवाजात. ही शब्दरचना आहे आनंद बक्षी यांची, संगीतकार लक्ष्मीकांत पॅरेलाल.

0: मित्रांनो, एक आर्टिस्ट, एक सिंगर म्हणून तलत जेवढे मोठे होते तेवढेच ते एक माणूस म्हणूनही मोठे होते. अत्यंत शांत, कल्चर्ड आणि निगर्वी, डिसेंट माणूस, सगळ्यांशी अदब आणि प्रेमानं, हळू आवाजात बोलणारा हा साधा सुधा जमिनीवरचा गायक. तलत जसे गात ना तसेच ते बोलत सुद्धा, हे मोठं दुर्मिळ असतं. गाताना आणि बोलताना अगदी सारखा आवाज ऐकायचं त्यांना बोलताना, ऐकूया.
1: मैं अपने फैंस का फैन हूँ. उन्होंने जब आगे मुझे जिंदगी मिलती ना, अब ऐसे आपसे आज पहली बार मुलाकात ही है, वैसे हजारों मुलाकातें होती हैं, उनकी जो जज्बा होता है वही मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे फैंस जो है वाकई मुझे जिंदा रखते हैं, तो उन्हीं की खिदमत में ये चीज पेश है कि भाई वो हमको याद करते रहे हमेशा हमेशा के लिए, गाने हमारे सुनते रहे, तो बहुत अच्छा ख्याल है.
0: तर असे हे तलत, चाहत्यांनाच मायबाप समजणारे तलत, त्यांच्या या स्मरण दिनानिमित्त ते आपल्याला काही सांगतायत.
2: मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, नजी को जलाना, मुझे भूल जाना.
0: मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न झीकू जलाना, मुझे भूल जाना. असं ते म्हणाले खरं, पण तलतजी, आपको भूल जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. आपकी याद तब तब आएगी जब जब शाम गम सताएगी, जब जब चांद बादलों में खो जाएगा, या फिर जब जब छाएगी सावन की घटा. शब्बा खैर.

दुनिया भर की सैर को देखो निकला है ये कौवा, उड़ते उड़ते इस नगरी में आ पहुंचा है कौवा, बुलबुल का हर गीत चुरा कर गाता है ये कौवा, औरों की नक्काली करके जीता है ये कौवा। कौवा

बोल बोल होके प्रसन्न क्या खाएगी, चरणों में तेरे आम केला अमरूद है, पीने को मैया भूरी गाय का दूध है। भूल भूल भूल हाय हाय भूल मैया भूल हुई भूल हुई भूल हुई मैया मांसधारी है, फल वाले जा कसाई की बारी है, हटाओ खरबूजा हटाओ तरबूजा, अरे जल्दी से लेके आओ मुर्गी का चूजा, अरे मुर्गी का चलेगा या बकरे का मांस, आदमी का चलेगा तो हाजिर है दांत, बलि नहीं चाहिए जो अच्छे इंसान की, तो चर्बी खिलाऊं किसी मोटे शैतान की। छो,

0: పెళ్ళో కల్లుకు ఊరయ్యో ఉన్నది అంతా ఉన్నట్టంటే ఊరంతా పుల్లుకు గుండెల్లో కల్లుకు గుమ్మ గుమ్మ గుమ్మ గుమ్మే తించే ముత్తుల గుమ్మ
1: विश्वास विश्वास ग्रुप आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे शाखा जलालपूर नाशिक आयोजित कार्यक्रम सूरविश्वास यावेळी सूरविश्वास अंतर्गत आस्वाद घेऊया कोलकाता इथल्या साईकत रीटा सुनील मुजुमदार यांच्या शास्त्रीय गायनाचा. त्यांना साथसंगत करणार आहेत गौरव पाखी कांचन बॅनर्जी तबल्यासाठी तर कुणाल मीना शिववर्मा संवादिनीवर. कार्यक्रमाचे आयोजक विश्वास जयदेव ठाकूर कुटुंब प्रमुख विश्वास ग्रुप डॉक्टर मनोज शिंपी अध्यक्ष विश्वास ज्ञान प्रबोधिनी अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट नाशिक रुचिता पार्थ महाजन ठाकूर कार्यकारी अधिकारी रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ संकल्पना विनायक रानडे प्रवर्तक ग्रंथ तुमच्या दारी. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करतील डॉक्टर स्मिता मालपुरे. तेव्हा आवर्जून्या आणि या सदाबहार मैफिलीचा आनंद घ्या. रविवार दिनांक 17 मे 2026 रोजी सकाळी 7 वाजता ठिकाण विश्वास गार्डन ठाकूर रेसिडेन्सी विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँकेसमोर सावरकर नगर गंगापूर रोड नाशिक.

0: हेलो।
1: हेलो भाई, मैं आपके पास।
0: हो बोला।
1: हाँ अनिल बोलते, रेलवे खेत बोलते।
0: बोला बोला।
1: हाँ तुम्ही मागच्या आमचं फार्मा पूर्ण केले म्हटलं, तू आनंद दत्ताचं भजन लावलं होतं। हो तर मला आज गाईडचं घ्यायचं होतं, मी तुम्हाला करतो। काटूचे खीच के आचल आहे ना, ते लावलं होतं बरं यायचे पण।
0: हा
1: माझा जरा आवाज बसला आहे।
0: बर बर बर, काही हरकत नाही।
1: धन्यवाद। थँक्यू।
0: हो हो धन्यवाद।
2: कुछ बोले के थी, कैसे गाइड हो?
3: मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर।
2: जानते हो क्यों?
3: क्यों?

0: हेलो, नमस्कार
1: हेलो, नमस्कार मैडम। अपन
0: सर. बोला. हो
1: देविका मैडम बोलता
0: बोला ना.
1: है। ये तुमचा आवाज खूप छान आहे।

0: लीजिए सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: खुशखबर खुशखबर खुशखबर, आरजे वर्कशॉप पुन्हा एकदा। काय सांगतेस, आरजे वर्कशॉप पुन्हा एकदा? हो, खास लोकाग्रहास्तव रेडिओ विश्वास तुमच्यासाठी घेऊन आले आहेत दिनांक 29 आणि 30 मे रोजी आरजे वर्कशॉप। तुम्ही दिलेल्या प्रतिसादामुळे आरजे वर्कशॉपची दुसरी बॅच आम्ही घेऊन आलेलो आहोत। यामध्ये तुम्ही शिकू शकणार आहात व्हॉइस मॉड्युलेशन, डबिंग, प्रेझेंटेशन, प्रोनन्सिएशन आणि आरजे होण्यासाठीचं संपूर्ण ट्रेनिंग। यासाठी वयाची कोणतीही अट नाही। प्रवेश मूल्य फक्त 2000 रुपये। अधिक माहितीसाठी संपर्क 8300 16512 किंवा 02-5523-4726-2626।
1: हॅलो, नमस्कार मॅडम। मी चिरमिरी क्रासा कालरी जिल्हा कोरिया छत्तीसगडचे इंद्रभान सिंग बोल रहा हूँ।
2: जी बोलिए सर।
1: ठीक है मैडम, अभी अच्छे में भी अच्छा हूँ, ड्यूटी पीरियड में हूँ। यहाँ पे तो धूप तेज है मैडम और हवा भी चल रहा है। मैं छाता ओढ़ के नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ और आपसे बातचीत थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। हवा चल रहा है, बढ़िया लगा। अभी हवा बढ़ गया मैडम। तो आप दिशा मूर्ति मनोरंजन अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है आंचल और राजेश राखी जी का फिल्म का गाना है और गीत ही बोले ऐसा रंगीन सामान शायद है। गायक आंचल, फिल्म का नाम है आंचल और गायक किशोर कुमार।
2: जी,
1: सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, रेडियो विश्वास जुड़े सभी लोगों को हेलो। एकता रेडियो श्रोता को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारी को, आपकी सहेलियों को, सभी लोगों को डिलीट करा मुझे। इसका प्रसारण रविवार को होगा तो जरूर सुना दीजिएगा 5 बजे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुना
1: जी मैडम। इसी फिल्म का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गाना सुनना है।
1: अच्छा कौन सा गाना सुनना है?
0: फिल्म फकीरा से तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई।
1: अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल सुनवा देंगे, बहुत ही बढ़िया गाना है। जी जी जी

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

आए जब देखा पिया मेले के नजारे हो, हाथों में हो हाथ तेरा आँखों में ही।